बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अर बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं।

0: ඔබ එක්වන්නේ සුදිල ගුවන් විදුලියේ හින්දි ගීතාවලියත් සමගයි.
1: तुम्हारा जो भी काम हो मुझसे कहा कर, मैं कर लूंगा।
2: अच्छा बेटे, अब तो जाके सो जा। जा।
1: आज मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं तुम्हारे पास सो जाऊं।
2: आओ आओ बेटे, मैं तुम्हें सुना दूं।